0: चार साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले दो साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
1: उन्हां सारियां गलवकड़ियां बारे सोचो जो तुसी अजे भी पाउणियां हन। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ breastscreen.org.au ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 1-3-2-0-5-0 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
2: ਹੌਟ ਸਪੌਂਸਰ
3: ਇੱਕ ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ ਵਰਕਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਪ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇ ਲਏ ਗਏ ਯੁਵਾਓਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਵੇਤਨੀਯ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਂਗੇ। अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें। ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबोर्न।
4: हेलो वनकम नमस्ते नमस्कारम नम पोन वारम இசைஞானி இளையராஜா அண்ட் இயக்குனர் இமயம் மிஸ்டர் பாரதிராஜாவோட காம்பினேஷன் சினிமா மியூசிக்கில் வந்து கொஞ்சம் பாடல்கள் கேட்டோம். And we're going to continue listening to some more beautiful, gorgeous songs from movies that they both made together. So, முதல்ல 1987ல வந்த படம் இது வேதம் புதிது. Mr. Satyaraj, Mrs. Sarita, Mrs. Amala நடித்த படம் கொஞ்சம் controversial. But மூணு Filmfare Awards வின் பண்ணிச்சு. சவுத்து, best film, best director and best actor for Mr. Satyaraj. அப்புறம் ரெண்டு நேஷனல் அவார்ட், பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆன் அதர் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் பெஸ்ட் எடிட்டிங் ஃபார் மிஸ்டர் மோகன்ராஜ்.